0: रत्नवा बारू भीत बनाई राजपथ रहत नहीं दिन चार तैसे ही सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजनू समझ रच बिगड़िया ना अजहू समझ

भरण सकै महिमान जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी एक मन पुरख त्याय बरदाता संत सहार सदा बखियाता तास चरण ले हृदय बसाव तव परम गुरु नानक गुण गाओ तास चरण ले हृदय बसाव तव परम गुरु नानक गुण गाव सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत समूह माई पाई गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ अजी कहिंदे हन जिस नूं किसे कम दा चज ना होवे तरीका ना होवे जीवन दा ढंग ना आउंदा होवे गुरु की

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन प्रतिमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

छिम्बरस वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू ले जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये वचन अपने पले बनांगे।

जी महाराज इकले ही आनंदपुर साहब नूं वापस मुड़ पए। उधर दुश्मन भजा जा रहे, तीन चार मील दुश्मन भजदा गया, पर अगे जाके ओ दुश्मन डट के खलो गया, क्योंकि जेड़ी फौज 3-4 हजार ओ पिछा छड़ के आए सन ओ उथे खलोती हुई सी। दुश्मन डट के लड़न लग पया, अगे ते सिंह दुश्मन नु पजांदे आ रहे सन, ते हुण सिंघां दा पैर पिछे पैण लग पया। जद पैर पिछे पया तां ख्याल आया कि गुरु किथे, पिछा मुड़ के देखिया पर दूर दूर तक गुरु साहिबां दा कोई पता नहीं। हुण दिल होर टुट गए, जित दी खुशी विच गुरु दा कहिआ नहीं मन्निआ, गुरु साथ छड़ के चला गया। जे गुरु वापस ना आया असी कदी भी जित नहीं सकदे, और गुरु तों बगैर असी कुछ भी नहीं। फैसला करके 5 घोड़सवार पजाए, जाओ गुरु नूं मोड़ के लियाओ। घोड़सवार भजे, नौरंग सिंह घोड़ा पजा के गुरु साहिबां तों अगे निकल गया। परिक्रमा कीती, घोड़ा पजांदे होए ने घोड़े तों काली नाल छाल मारी, अते उची सारी नीले घोड़े नूं कहा, ओ नीले आ तेनू 100 बाजा वाले दी जे एक कदम भी तू अगे पुटिया। गुरु दी सौ सुनी, नीला घोड़ा उथे रुक गया। नरंग सिंह ने गुरु साहिबां दे चरणा ते सिर रखिया ते कहा, पातशाह जित दी खुशी विच तेनू भुल गए, पर हुण पता लगा तेरे बगैर असी कुछ भी नहीं। साहिबां ने घोड़ा उसे वेले वापस मोड़ लिया और हवा दी तरह घोड़ा पजाया। उड़दी धूड़ विच कलगी दी लिशक सिंघां ने देखी, लालियां चढ़ गईयां, आ गया बाजा वाला, आ गया साडा कलगियां वाला, हौसले वधे। ऐसी साहिबां ने तीरां दी मार मारी, देखद्यां देखद्यां दुश्मन दा नास होया, गुरु साहिबां दी जित हुई। हुण सारे सिंघां ने गुरु साहिबां कोल खिमा मंगी, तां साहिबां ने इक गल कही, सिंघो इक गल याद रखो, इक दी आग्या मन्नोगे, इक दे पिछे चलोगे, इक अकाल पुरख दी ओट रखोगे, ते दुनिया दी कोई ताकत तुहानूं हरा नहीं सकेगी। अगर तुसीं सारे वखरे वखरे राह बना के चलोगे, ते फिर याद रखो मैं तुहाडा कदी भी साथ नहीं देवांगा। क्यों? मैनू सिख प्यारा नहीं, मैनू रहत प्यारी है। असूल प्यारे ने, ते जिहदे असूल नहीं, जिहड़ा रहत विच पक्का नहीं, ओहदा ते मेरा संबंध कोई नहीं। अज सिखां दा इसे वास्ते ये हाल है, कई दल कई आगू कई राह, पर गुरु साहिबां दा फैसला है, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जदू तक सिख सचमुच सिख बनेगा।

अपने कार विहार कर दिया। तेरा शरीर भावे सुख विच है दुख विच है, देश है परदेश है, तेरा शरीर भावे कितनी भी दूर बैठा होवे पर तेरा मन गुरु दे चरणा विच होवे, तेरा मन गुरु दे चरणा विच जुड़िया रहे, ए उत्तम मंग है। कहो नानक तिस सब किश नीक।

सन्यासी दे रूप में देव मूर्ति नु कहंदे ने। जे मैं मुक्त होवां कला मुक्त होवांगा, कल्याण मंगा, मुक्ति मंगा, ता कला मुक्ति नु प्राप्त होवांगा। पर मैं चाहना ओ परमात्मा, ओ हरि मेरे कारे पुत्र बन के जन्म लवे। जिस तरह कोई मूर्ति दी पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बैठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मैं भी ओदे दर्शन करा, ओदे दर्शन करके जिते मैं मुक्ति नु

इस सन्यासी पिता मेहता का लू ऐ बाल के त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच गृहस्थी होवोगे, फिर त्वाडे कार ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इन्हां दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान होए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, एक एहो जिहा सुपना है, ये ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ये नानक मेरे तप दा फल है कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी, जो मैं ये पारी तप कीते उस तप दा फल, मेरी अरदास दा फल, जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया, उठ के खड़े हुए अपने आप नूं कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे, धन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे, ते की देखते धन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा पर प्रकाश है,

हाथ जोड़ ले, अखां विच अथरू हन, रोंदे होए पिता मैं काकार हौली हौली तुर पए, नाले कहंदे आ रहे ने ऐ दाता, मैं अरदास कीती मेरे घर पुत्र बन के जन्म लै, तू मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया, तू मेरी गोद विच खेड़े।

तेन पहचान ना सके। और एक बारी ऐ दाता वीर पैया दे बदले मैं तेरे मुंह ते चपेड़ भी कट मारी।

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नु गल दे नाल लगाया ते नाल ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है

ओ माता पिता नु दुख दे, ओ माता पिता नु ठोकरा मारे, ते बच्चियां दा फर्ज। जन्म देने वाले माता पिता दाते हैं, दाते दा शुक्र किया जाता है, दाते दी सेवा कीती जाती है, दाते नाल मेने ताने नहीं पिड़े जाते।

जेड़े बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते कोई समझ लैन उन्हों का दान पुन भी सफल नहीं होता। जेड़े माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हों का किया होया दान पुन तीर्थ यात्रा पाठ पूजा भी सफल नहीं होती।

अपने घर विच वड्यां दा आदर मान करना, पर देखदे आं एक मां बाप अठ धीआं पुत्तरां नूं पाल सकदा है, पर जद ओही माता पिता बुढ़े हो जाए

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे लिए आख्या, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिलके पै जाओ। जिस वेले उसने अपने आप नु सग कहा, कुत्ता के आखन लगा, तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हाँ। नंद लाल उसे सुन ले तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नु इन्ने प्यारे होंगे ने कि छेज से चढ़ जाते हो, बाबा मैनू हाले ये अवसर प्राप्त नहीं होया, ये मौका नहीं मिले अपने गुरु गोविंद सिंह जी की छेज से बैठ मा। नंद लाल आगरा तो बेहद पदार्थ सन तेरे खान पीन वास्ते, इतने की मिलता है, इतने की मिलता है। नंद लाल ने बड़े सुरूर विच आके, बड़े वजित विच आके, बड़ी मस्ती विच आके

सलामत अपने गुरु दे चरणा विच आ गया ते चरण पकड़ दे महाराज मैनू सिमरन दी दात दियो कर देवो मेरे नाम जपदा रहा तेरा जी दुनिया है मुस्कान।

और ये गामा बानी दरे दरे नीदा नीदा नीबा धामा धामा गा धामा बाबा बाबा धामा धामा बाबा गा धामा रे दानी दानी रे दरे दानी रे रे जानी जा गा गामा बा गामा पानी जा रे रे जा रे नी जा नी जा गा गा बा बा बा धा बा धा गा गा गा मा गा रे जे गा रे जानी जा गानी रे रे तुम गिरना गिरना गिरना जानी जानी तुम जानी जा तुम गिरना दागरती बिकते बंग दागरती तोम तोम तोम करना दागरती दे दे ताल दागरती कोम करना दागरती दे दे ताल दागरती दे दे ताल दागरती दे दे ताल दागरती दे दे ताल दागरती कोम करना दागरती दे दे ताल दागरती दे दे ताल दागरती कोम करना कोम करना कोम करना

गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ भुल।